इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM। RJ's

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
1: और जे साहिल
0: डॉन को ऑफ रेडियो
1: द डॉन डॉन और जे साहिल द डॉन ऑफ रेडियो।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन
2: रेडियो चुनार।

Assalamu alaikum, adab, and a warm welcome to all of you. दोस्तों हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 एफएम हाजिर है और जेजियस लेकर शो व्हाट्स अप।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: Yo, what I'm about to do is break it down. Rich Rich. You ain't heard something like this before. Yeah.

और दिल की धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM दोस्तों, रेडियो चुनाव को चाहिए आपका प्यार। फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चुनाव के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर, साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप। ऐप डाउनलोड करते ही प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव, जिसे सही बनाता है आपका प्यार चौकसी उसके साथ। मेरे दोस्त मेरे हमदम सरिया दरकाते रहो।

0: Zeus.
1: Kom on, ajo.
2: Radio Chennai. Radio, Radio Chennai. Weather update. Weather update.
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल एंजॉय कर रहे हैं आप मस्तार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में ब्रदर आज का वेदर
2: रेडियो चैनल वेदर अपडेट जी हां कैसा होगा आज का मौसम क्या होगा पस्किंग या होगा ऑसम
3: चलिए बताते हैं। यह आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस। वही सूरज और बादलों के बीच में घमासान चलती रहेगी।
2: रेडियो चिन्ना वेदर अपडेट।
3: सूरज बादल को ढकने की कोशिश करेंगे एज इट्स पार्टली क्लाउडी फॉर टुडे। वैसे गरज बरस की कोई संभावना नहीं है, बस ये है कि बादल आपके माइंड को डबल माइंड कर सकते हैं।
2: वेदर अपडेट।
3: यू इंडेक्स अभी के लिए वीक पर, ह्यूमिडिटी 71%, जीरो पर है विंड स्पीड, विजिबिलिटी है 4 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 5:55 पर, आज का सनसेट होगा जी हाँ 7:16 पर। और दिल की धड़कन रेडियो चुनार सिटी हक्ट, मेरी जान दरगाह दे रहा।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
1: रिजनर की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो का सेगमेंट वायरल ऑन व्हाट्सएप। जी हाँ, कहत ज्ञानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। जी हाँ, ये वायरल ऑन व्हाट्सएप पर बात करते हैं एक चाइनीज एनिमेटेड मूवी की जिसका नाम है न्यू लाइफ। अब ये मूवी तब इंटरनेट की सेंसेशन बनी जब इसके एनिमेशन को लेकर कटाक्ष किया गया। छियासठ मिनट की ये मूवी सिर्फ दो लोगों ने बनाई है और जिनमें जिन यिमिंग और सन लिपेंग शामिल है और राइटिंग, डायरेक्टिंग, वॉइस एक्टिंग सब किया गया है। और जब ये इंटरनेट पर रिलीज हुई तो लोगों ने कहा तौबा तौबा, इका बवाल बना दिया होबे, इसके एनिमेशंस इतने लो कॉस्ट है, इतने घटिया, इतने बकवास के बकवास एनिमेशंस के लिए ये मूवी जो है ट्रेंडिंग में आ गई। महज 236 व्यूअर्स जिन्होंने इसको देखा और मूवी कमा चुकी है टोटल 7169 व्यूअर्स। पूरी दुनिया में चाइना ने अपना बना डाला है जोक, क्योंकि लोग कर रहे हैं उन्हें पोक और बोल रहे तब ये क्या मूवी है, वायरल थी तो व्हाट्सएप पर आ चुकी है।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, आई एम नॉट द स्किन, आई एम नॉट द हेयर, आई एम द सोल दैट लिव्स विद इन। दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम, सिटी हट धड़काते रहो।

0: Cheers.
1: Hardcore Kid Arkham Radio Channel 90.4 FM पर सनराइज स्टार शो व्हाट्सअप। जी हाँ, व्हाट्सअप शो का हिस्सा बनने के लिए, अपना किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए 8899-04904 इज द नंबर। नाउ 0094 आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। और दिल की धड़कन को धड़काएं, अपनी बात हम तक पहुंचाएं। जी हां, हमें बताएं क्या है आपके दिल में वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनाने। आप कॉल, व्हाट्सएप, टेक्स मैसेज के अलावा डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से। व्हाट्सएप शो में आज हम बात करने वाले हैं ब्रिजेस के बारे में। जी हां, ब्रिज जो कश्मीर में कल्चर को प्रिजर्व करे हुए है, हिस्ट्री को प्रिजर्व करे हुए है, और अगर हम देखें तो इन्हें स्ट्रक्चरल लाइफलाइंस माना जाता है। कौन कौन से ऐसे ब्रिज हैं जो मौजूद हैं, उनके बारे में बात होगी, उनके बारे में बताएंगे, मिलेगी आपको ज्ञान की गुट्टी टूटी फ्रूटी। यहाँ जुड़ने के लिए आप भी अगर कुछ खास जानते हैं किसी भी ब्रिज के बारे में, चाहे श्रीनगर, साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल, हमें जरूर बताएं, अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। याद रखिए 8899-0094 नंबर। ब्रिज ऑफ कश्मीर आज के वो सब शो का टॉपिक।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: ¿Cómo la veo?
1: Dios. Dios. Dios.
0: और दिल की धड़कन मस्तार शो व्हाट्स अप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ मैं हूं जॉक्सिस एंड यू आर ट्यून इन टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर। ये यहाँ पल पल निकलता जा रहा है और मुझे पता है टॉपिक के साथ आप भी जुड़े हुए हैं। आरिफ जुड़े हमारे साथ, देखिए आरिफ लिखते हैं कि सर आज घर में ही हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और वर्क फ्रॉम होम के चलते बताना चाहूँगा कि आपका टॉपिक जो है बड़ा ही मज़े

यादगार है और मेरे कान रेडियो की तरफ ही है क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ब्रिज कब और किसने बनाया था। बताएंगे, जरूर बताएंगे, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आरिफ की तरह आप सब हर दिल की धड़कन को धड़काएंगे। थैंक यू सो मच आरिफ, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 8899904904 इज द नंबर। ब्रिज इन कश्मीर आज का टॉपिक। और सबसे पहले अगर हम बात करें वन ऑफ द फेमस ब्रिज अमीरा कदल ब्रिज, जो कि 1774 में अफगान गवर्नर आमिर सर खान शेर जवान ने बनाया था, और इसका जो महत्व है दैट इट मार्क्स द गेट वे ऑफ द सिटी एंड बॉर्डर्स द बस्टिंग ऑल्सो कमर्शियल सेंटर। अब जिसको भी लालचौक होकर जाना है तो अमीरा कदल से होकर गुजरना पड़ता है। देखिए, कदलन हिंची ये अहमियत कशीर मत कि वन तिश कदल तार रटा युति महाराज वात कदलस पे गड़ी रुकान दोश रिश्त दार खड़ा गा। एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ दैट कि कदल तार दिन जरूरी बिकॉज ब्रिज हैव बीन द नोज टू कनेक्ट वन टाउन टू अनदर। हवा कदल जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था 1551 में और इसका नाम जो है सुल्तान हबीब शाह के नाम के पीछे रखा गया था। एंड दिस ब्रिज सिट्स इन द हार्ट ऑफ ओल्ड रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। वही फतेह कदल की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा होगा इसमें फतेह कदल बेटा ऐसे दरामद। वैसे हवा कदल के रिलेटेड ये भी है कि हब सुना हब कदल कैच फतेह कदल कमीशन बाय सुल्तान फतेह शाह इन 1500s इट कनेक्ट्स की एंड सेंट्रल मार्केट प्लेसेस। अब नए ब्रिज बने हैं लाइक बट द ओल्ड वंस आर स्टिल देयर दे स्टैंड टॉल एंड दे होल्ड द हेरिटेज एंड कल्चर इंक्लूडिंग द हिस्ट्री इन देम। रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर बातचीत जारी है, बने रहें, सुनते रहें, दिल की धड़कन को धड़काते रहें।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: जी हाँ, रेडियो चैनल 90.4 एफएम पे जो कर रहे हैं मजेदार शो वसा। मैं हूँ जॉक्सियस और वसा शो में अगली पेशकश होगी आई फील गुड, शो डेडिकेटेड टू द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। जी हाँ, आँख भी मारेंगे आप, धड़कने तेज भी करेंगे क्योंकि वेस्टर्न वाइब्स कानों से होकर सीधा दिल पर करेंगे असर। जरा सा इंतजार, देते रहे प्यार हर दिल की धड़कन को, धड़काते रहो मेरे यार।
1: तुषार कपूर की आवाज में।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Jeremy. Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: यो बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: आए हाय, प्यार के काबिल तो सच में आप ही है और आप ही तो है इस वक्त के बादशाह। 91.4 रेडियो चुनार प्राग आ चुका है शो चुनार बीट्स का विद फुल ऑन वाइब एंड ट्राई बीट्स।
1: वो बदल गया।

0: beats on repeat. Show Chunar beats up. Enjoy kar rahe only on Radio Chunar 90.4 FM. Dei sari baatein, masti mazak, fun, entertainment aur entertainment ke alawa dei sari information aap tak pahunchti hai. Well, hamesha ki tarah I was super duper excited kyunki show start ho chuka hai. Chunar beats aur excitement ki wajah bhi main aapko kuch hi der ke baad bataungi. To kya hai excitement ki wajah aur kya hai itni zyada excited. So ye to bas waqt rehte hi pata chalega aur waqt jo ki kahin nahi ja raha hai filhal mera hai yahan par aur mere sath meri puri vibe aur tribe ka bhi hai. तो वही है कि जुट जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा, सुना कर कोई मजेदार सा किस्सा और बताइए क्या थी तो बेहतरीन सी वो था जो सुबह शुरुआत आपने की और आपको लग रहा है सच में दिन काफ़ी सही जाने वाला है. So I'm here, want to go here and there, my friend, make it fair and fair बनाने के लिए आपको तो पता ही है कि नौ सिफर सो ये नंबर है जो कि आपको रोमांच छोड़ के रखता है. तो जल्दी से शो का हिस्सा बन जाइए और बात बैक सॉन्ग्स को एंजॉय कीजिए.
1: लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम.
0: जी हाँ, हम चाहे ट्राइब को, हमारी ट्राइब चाहे पूरी वाइब को, तो इसमें अरे गहरे यार इसके नेगेटिव थॉट्स का क्या है का?

0: बात हुई ना कि मैं और तू और कोई नहीं चाहिए, बस अभी यही है कि बैक टू बैक सॉन्ग्स हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन और मेरे दोस्त अक्सर
1: का। और आप जानते हैं कि डॉन का मनोरंजन करना हमारा फर्ज है,

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Beats on repeat, show Chunar Beats of Enjoy Kare only on Radio Chunar 90.4 FM. And we are talking about National Highway of Jammu and Kashmir. नेशनल हाईवे की बात करें, बोथ साइड से ट्रैफिक को अलाउ किया जा रहा है, आराम से आ सकते हैं जा सकते हैं, आप नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं. बट बी केयरफुल, बी कॉशियस, बिकॉज ज़रूरी है कि हम समझे कि रास्ता कभी भी ख़राब हो सकता है, रास्ते में कभी भी रुकावट आ सकती है. सो उसे मद्देनज़र रखते हुए ही, गाइडलाइंस को देखते हुए ही हमने समझना है कि लाइट मोटर व्हीकल्स को सुबह से शाम तक अलाउ किया जाएगा, शाम 12:30 तक, और हैवी मोटर व्हीकल्स को दिन में ही परमिशन मिल, यानी कि वो दिन में ही ट्रैवल कर सकते हैं. शाम 8 से 9 बजे तक ही उन्हें अलाउ किया जा रहा है. वेदर कंडीशंस को मद्देनज़र रखें, उसके हिसाब से आप अपना ऑल्टरनेटिव रूट्स दिमाग में रखें. फिलहाल के लिए आप ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना, दैट्स फॉर एवरीबॉडी एंड दैट्स नेसेसरी कि हम समझें कि ये हर किसी की जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी है, इससे हमें निभाना पड़ता है. और ज़रूरी ये भी है कि गलत जगह पे ओवरटेक करना नॉट फेयर. तो फिर है क्या, तो फिर ये है कि अगर हम समझें हमारी जिम्मेदारी क्या है और जिससे हम सच में कूल दिखेंगे, फूल नहीं हीरो वाले काम करने, जीरो नहीं. अब अफगान जले जले जलेबी, जी हाँ, अफगान जलेबी ये ट्रैक आप एंजॉय करेंगे. फैंटम से आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुनेंगे अभी नहीं, बराबर 2 बजे. फिलहाल के लिए शो कैसा बन जाए, 8999 0494 पर कॉल कीजिए, टेक्स व्हाट्सएप कीजिए और शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाए.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: आरजे ज्यूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM।

0: Beats on repeat, show chunar, beats up. Enjoy kar rahe ho New York Radio chunar 90.4 FM. Dei sari baate ho rahi hai. And we are talking about offbeat destination places, jahan par hum visit kar sakte hai. Kya hai wo destinations, expenses kitna involve hota hai jab hum aisa kuch offbeat destinations mein jana chahte hai, ya phir hume explore karne ko milta hai. Wo sari jagahein jahan pe humne नाम ना सुना होता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम होती है, जहाँ पर हमें वो सच में सुकून जो है वो मिल जाता है. तो क्या है ऑफबीट डेस्टिनेशंस जो हमारे कश्मीर में है? स्पेशली विल टॉक अबाउट इंडिया, कश्मीर ओवरऑल वी विल टॉक अबाउट हमारे देश की खूबसूरती कितनी ज़्यादा है. अभी भी बहुत सारी जगह है जो हमने एक्सप्लोर नहीं की है, जिनकी हाइप नहीं है, बट वो एक्चुअली जब वहाँ पर विजिट करते बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो क्या है वो जगहें, बात होगी अभी शो का 7688 9904. आपका कहाँ जाने का इरादा है मुझे बताइए. 8899904 एक्स व्हाट्सएप कीजिए. शो चुनाव बीच कैसे बन जाए
1: या अभी भाग चले.
0: अभी आपको कहाँ भागने का इरादा, मैं तो कहीं नहीं जाने दे रही. मैं यही हूँ आपके साथ, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM.

it's on repeat. Show Chunar Beats. I'm enjoying it on your radio Chunar 90.4 FM. Day sari baat ho rahi hai, and we are talking about ये दूध पत्री हो, गुरेज हो, या फिर अगर हम स्पित वैली की बात करें तो एक से बढ़कर एक ऐसी जगह है जो भी ऑफ बीट डेस्टिनेशन जिसको हम कहते थे, अभी वो इतनी बड़ी पड़ी है. अभी अगर हम देखें तो अभी बहुत सारे लोग इन जगहों पे विज़िट करते हैं और ये ना नो एनी मोर ऑफ बीट. अभी भी पता चल रहा है कि लोग कितना ज़्यादा नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और फिर वहाँ पर बार बार विज़िट करते हैं. So we are talking about offbeat destinations. और अगर हम कश्मीर की बात करें, कुछ सालों से एक ऐसी वैली जो खूबसूरत तो थी, एक रिमोट है ना, हम कह सकते हैं हिमालयन वैली जो हम लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है, काफ़ी समय में लगता है. अगर हम कश्मीरी हम अगर बात करें तो हमें भी बहुत टाइम लगता है, ऑलमोस्ट अ डे सो टाइम लगता है वहाँ पहुँचने के लिए. लेकिन एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट गुरेज वैली, जो अभी तक कहीं ना कहीं हमें नहीं पता था. अभी से 4-5 साल पहले तक उतना ज़्यादा लोग वहाँ विज़िट नहीं करते थे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो अभी सबसे ज़्यादा रश, अभी अगर हम देखें लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि गुरेज वैली जाना. गुरेज वैली के बगैर अगर हम देखें तो अब कश्मीरियों का भी एक टाइम रहता है कि इस टाइम का डांत है इसका गुरेज. बट गुरेज है इतना खूबसूरत और कुछ टाइम से ये वैली बेस्ट बन चुकी है टूरिज़म के लिए, एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट. एंड अभी अगर हम देखें, इट्स नॉट एनी मोर ऑफ बीट बिकॉज इट्स नाउ अ डेज काफ़ी ट्रेंडिंग इन ओवरऑल इंडिया में. अभी इंटरनेशनल अगर हम देखें तो और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, दैट गुरेज वैली है क्या एंड क्यों इसे इतना ज़्यादा मानते हैं. ऐसे एक से बढ़कर एक जगहें हैं कश्मीर में जिन्हें हम मानते हैं, या इंडिया की अगर हम बात करें बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, आसाम की बात करें या फिर कर्नाटका की बात करें, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं पूरी दुनिया में आज उन्हें मानते हैं, या फिर हम नई नई चीज़ें डिस्कवर हुई है, नई नई जगहें डिस्कवर हुई हैं और अभी लोग वहाँ विज़िट भी करते हैं और लोगों को अभी काफ़ी अच्छा लगता है कि वो नई जगहों को एक्सप्लोर करें. आप मुझे बताएं, आपने इन टाइम में जो है कौन सा प्लेस है, कौन सी जगह है जो आपने एक्सप्लोर की और आपको लगता है दैट वाज बेस्ट टाइम टू विजिट और आपने एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया, मुझे बताएं. शो का ऐसा बन जाइए 8999 0904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप करके आप शो में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

देखिए मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, आपके साथ हूँ और आज शो पे बात हो रही है ऑफ बीट डेस्टिनेशंस के बारे में। बराबर 2 बजे तक आप शो चुनाव भी एंजॉय करती है और 2 बजे आज बराबर जो म्यूजिक ऑन डिमांड आप सुनेंगे 3 बजे तक। सो आपने क्या करना है, 8899904904 पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपनी, आप ऑलरेडी भेज के रख सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके आप शो में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफबीट डेस्टिनेशंस जो हमें एक्सप्लोर करने चाहिए या जिनको हमें एक्सप्लोर किया है, एक्सपीरियंस कैसा रहा उस बारे में बात हो रही है। आप सुन रहे हैं और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM। आप भी शो में शामिल होकर अपनी राय मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मैं पहुंचाऊंगी आपकी राय वहां वहां तक जहां जहां तक पहुंचती है रेडियो चुनार की आवाज़। तो जल्दी से शो का ऐसा बन जाए। आप सुन रहे हैं दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800180।

7178 1800 1807199. श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026. जय बाबा बर्फानी.

देखिए हर सफ़र में हमारा सफ़र जो है, हर सफ़र में सुहाना तब होता है जब हमारे साथ मौसम दीवाना, हमारी जगह जहाँ पर हम जाने वाले होते हैं वो खूबसूरत होती है, वहाँ पे हमें सुकून मिलता है और हमें ऐसा लगता है कि सच में हमने सही जगह चुनी है घूमने के लिए। अब बात भी हो रही है ऑफबीट डेस्टिनेशंस के बारे में, सो बेस्ट ऐसी कौन सी जगहें हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि आपने कौन से एक्सप्लोर की है इन सालों में, आपको लगा कि पहले क्यों नहीं हम जाते थे, दे वर वेरी अंडररेटेड, उनको नहीं ज़्यादा हाइप नहीं मिली या फिर लोग वहाँ नहीं गए थे, सो आपको क्या लगा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सी ऐसी जगह है जो आपके हिसाब से बेस्ट है। देखिए जितनी दफ़ा ज़िद ये है कि वहाँ जाने की जहाँ आपने खुद ही वो चीज़ एक्सप्लोर करके आपको लगा कि बेस्ट है, मुझे बताइए शो कैसा बन जाए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आवर बी डेस्टिनेशंस ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 एफएम, शो चुनार बीट्स, आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो चुनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।

गीत यानी कि टाटा बाय बाय। और अभी वक्त आ चुका है कि कुछ ही देर के बाद जूस नहीं मैं ही आऊंगी ऑन द माइक और आप सुनेंगे अपने फेवरेट ट्रैक्स 8899904904 पर। आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं। शो म्यूजिक ऑन डिमांड 2 बजे स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप भी शो कैसा बन जाए और सुन पाएंगे आप म्यूजिक ऑन डिमांड ओनली ऑन हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 91.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
1: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

लेकिन मजा तो आएगा क्योंकि शो है म्यूजिक ऑन डिमांड। बराबर 3:30 तक आप एंजॉय करने जा रहे हैं शो म्यूजिक ऑन डिमांड। और पहली रिक्वेस्ट आलिया की आई है इस ट्रैक के लिए, एंजॉय कीजिए वलम पिचकारी। आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8899904904, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाए।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड अब एंजॉय करें ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम। और यहां पर आतिफ की रिक्वेस्ट आई है, इस ट्रैक के लिए आप भी एंजॉय कीजिए आतिफ की रिक्वेस्ट पर ये ट्रैक। आप अपना फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए 8999904 पर आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन सकते हैं।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

देखिए, दिल दर बदर हो और उसमें मेरी पूरी वाइबो ट्राइब हो तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन अभी वाइबो ट्राइब को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शो चिनार बीट्स शो म्यूज़िक ऑन डिमांड ख़त्म हो चुका है। अभी मैं आपसे कल मिलूँगी 12 बजे। अभी आप अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी। और सुनते रहे रेडियो चिनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM. स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है।
1: व्हाट्सएप पे
0: तभी व्हाट्सएप
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन। ऑल राइट, अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ। मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर, शो का नाम, जी हाँ, दिल की बात साहिल के साथ। और ये सफर हो चुका है शुरू, 5 बजे तक आप और हम रहेंगे लाइव इस शो में, ढेर सारी बातें करेंगे, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट लाइन ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्विस्टेड ट्यूसडे इवनिंग। और भैया, अगर आप अभी ड्राइव कर रहे हैं और गोइंग होम दफ्तर से, कहीं से काम से कहीं गए थे और घर की तरफ लौट रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते करते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं, हाँ हाँ, चाय की चुस्की के साथ शो का मजा ले रहे हैं, तो बॉस वहीं पर रहिएगा, ढेर सारी बातें कर रही है आपसे, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट लाइंड अप फॉर यू इन दिस शो। अपनी रफ्तार पे काबू रखिए, आराम से गाड़ी चलाइए, जी हाँ, सीट बेल्ट लगा के रखिए, एम्बुलेंस को जगह दीजिए और मजे लेते हुए रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा अप करके गाने सुनते हुए हमसे बतियाते बतियाते अपने घर पहुंच जाइए, क्योंकि आपके लाउड वंस आपका इंतजार कर रहे हैं। इस खूबसूरत सी शाम में सफर रहेगा जारी, फिलहाल यू गाइज फास्टन योर सीट बेल्ट बिकॉज द फ्लाइट ऑफ एंटरटेनमेंट इज ऑल सेट टू टेक ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ रेडियो चेन्नई विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी शान। यस, इट्स यम्मा यम्मा 80s स्पेशल कमिंग योर वे। आरजे साहिल इन द हाउस, एंजॉय द ट्रैक, आई विल बी राइट बैक।

0: लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में।

If you have just tuned in, you are listening nothing but the best of the best 90.4 FM Radio Chennai. और इस सुहानी शाम में आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे रीडिंग हैबिट्स हैं. हाँ हाँ, पावर ऑफ रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है हमें पढ़ाई करना. पढ़ाई इन द सेंस बुक रीडिंग. इट्स नॉट अबाउट यू नो गोइंग टू स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो तो जरूरी है ही. लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन बुक रीडिंग का हैबिट जो है ना, वो हम मोबाइल फोन के चलते, टेक्नोलॉजी के चलते भूल गए हैं. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज कई साल हो गए एक किताब भी नहीं पढ़ी है. और कुछ लोग ऐसे हैं, टेक्नोलॉजी जहां से जहां पहुंच जाए, नो मैटर व्हाट, उन लोगों को आज भी जब तक किताब के दो चार पन्ने ना पढ़ ले तब तक नींद नहीं आती. एंड बुक रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल टूल है ये अपनी यू नो इंटेलिजेंस लेवल को, अपनी नॉलेज को यू नो इम्प्रूव करना. और इंसान को पता चलता है, वट एवर जॉनरा यू लाइक, आपको कोई भी जॉनरा पसंद हो, बस किताब हाथ में होनी चाहिए और किताब पढ़िए. क्योंकि इससे हम सब की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन होती है. हमें पता चलता है एक तो राइटर के थाट्स क्या हैं. एंड बुक रीडिंग इज़ कंसिडर्ड यू नो इट्स एक ऐसा टूल है जो हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी मेमोरी को शार्पन करता है और हमें नॉलेजेबल इंसान बनाता है. क्या आपने कोई किताब पढ़ी है पिछले 5-10 साल में या पिछले 1-2 साल में? अगर पढ़ी है तो बताइए, हमें रिकमेंड कीजिए. और आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं कि किताब पढ़नी कितनी ज़रूरी है? वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊँगा. आई विल टेल यू कि क्या मैं आपको बताऊँगा. जी हाँ, किताबें हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और रहने भी चाहिए. यू कैन रिलेट टू दिस सॉन्ग.

मेरे साथ, मेरे साथ। दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

यकीन माने दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो जब भी कानों पे दस्तक देते हैं तो दिल की धड़कनें तेज होती हैं। गलियां ये ट्रैक जब रिलीज हुआ तो इट्स लाइक अ लव एंथम, और बहुत सारे लोग इस गाने को इतना पसंद कर रहे हैं और अभी भी करते आ रहे हैं कि लूप पे ये गाना सुनते हैं और इस गाने का हर एक लफ्ज और इसके म्यूज़िक का हर एक सुर उसको एंजॉय करते हैं और अपने आप को यूं महसूस कराते हैं कि बहुत सुकून मिल गया। एंजॉय द ट्रैक।

क्या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी गलियां हैं जो आपको आपके मन को भाए या कभी आपको तड़पाए, तो बताइए हमें 9999904 पे कॉल व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करें। शो का नाम दिल की बात साहिल के साथ, मैं हूं साहिल मुजफ्फर, लौट के आऊंगा।

अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं कश्मीर इज हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी 90.4 एफएम रेडियो शिनार पे शो दिल दिल, हाँ दिल की बात साहिल के साथ। पावर ऑफ रीडिंग के हवाले से हो रही है बात। पढ़ना लिखना तो हर एक की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन हम बुक रीडिंग की बात कर रहे हैं। डिफरेंट जॉनर्स के बुक्स हैं, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो यू नो नॉवेल्स हो, चाहे वो किसी की ऑटोबायोग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो लिटरेचर, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड। और किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आज की डेट में हम सोशल मीडिया पे इतना बिजी हो गए हैं, सोशल मीडिया की दुनिया ने हमें यू नो वो घेर के रखा है और हम मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट में इतने घुस चुके हैं कि हमें कभी वक्त ही नहीं मिलता है कि हम किसी अच्छी किताब के दो चार पन्ने पढ़ लें और अपनी नॉलेज में कुछ इजाफा कर लें। What do you feel कि कितना इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में भी पढ़ाई करना, या बुक रीडिंग का पावर कितना है? आपकी क्या एक्सपीरियंस है? आपने रिसेंटली कोई बुक पढ़ी है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें, हमारे लिसनर्स को? तो हम आपकी बात और आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे भैया वहां वहां तक जहां जहां तक जाती है रेडियो चिनार की आवाज़। फिलहाल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहां पे हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ओम शांति ओम। एंजॉय दिस ब्यूटिफुल ट्रैक, इट्स रोलिंग अप इन द बैकग्राउंड। मेरे तो ये बहुत यू नो फेवरेट सिंगर है। जी हाँ, किशोर दा की बात हो रही है, कर्ज मूवी मेरी उम्र के नौजवानों। एंजॉय द ट्रैक, आरजे साहिल लौट के आऊंगा।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
3: Chinar beats with Harshi Deepa only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: सुनी।
1: आप? आपने तो कहा था कि
0: ठीक ही तो कहा था, फाइव स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

जी हाँ दोस्तों, किसके नसीब में क्या है ये किसी को पता ही नहीं होता है, और ऊपर वाला बैठ के सबका नसीब लिख रहा है, और उम्मीद में यही हम उम्मीद यही लगानी हमें चाहिए कि जो हमारे नसीब में ऊपर वाले ने लिखा होगा वो बहुत ही बिल्कुल सही होगा। नसीब पे भरोसा कीजिए, लेकिन

के लिए शो को क्लोज करना पड़ेगा. इट्स टाइम टू रैप अप द शो एंड गो होम. लेकिन म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो चैनल. आपको कहीं जाने की जरूरत है नहीं. जी हाँ भैया, खूबसूरत सा बॉलीवुड म्यूजिक आप तक पहुंचेगा, बैक टू बैक ट्रैक्स, एंड देन आपका इवनिंग का फेवरेट शो सुहानी शाम. आज भी कुछ स्पेशल ही होगा आपके लिए. एंजॉय कीजिएगा. दीजिए मुझे इजाजत. टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव, सेपरेट सम स्माइल्स. और आइए मिलके जाते जाते इस ट्रैक को भी एंजॉय कर

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क

कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4, 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8, 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026, जय बाबा बर्फानी।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: खबर।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को करार आ जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
4: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खा

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करने वाले हैं?
2: उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: सलून में?
2: लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं, बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, हर और घर वाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: राहुल,

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: モニーカ
1: ー。वो आ गया, देखो, देखो वो आ गया।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

सुबह चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं मगर मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे, अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात
2: पांच
1: लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
1: सा

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार। ओ गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुद्धन तीर भी टक्कर, क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूँ न आए करार।
1: हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: और बचाओ, मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय मुझको बना दे बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

0: दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

0: तने प्यार हो गया।
1: ओ मनु तेरा हुआ अब मेरा।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आहा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आहा। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ही है।
1: ए, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो।
0: सौ बातों की एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: चल दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: चाहते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।